0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vedasar Shivastava. He Papa Vimochan Mahadev. He Nityananda Swaroop. Panchamukh Tripurare. Aap प्रसन्न हो।
3: इस संसार में सभी मुसाफिर हैं, आते हैं और जब ईश्वर का बुलावा आता है तो चल देते हैं। आज जिसका शोक कर रहे हैं उसे तो नया जीवन भी मिल गया होगा। यही रीत है इस संसार की।

अज्ञान के अंधकार से मुक्ति देने वाला परम पिता परमेश्वर ही है। वही जगत का पालनहार है। आओ निर्मल मन से शरणागत होकर प्रार्थना करें, हे प्रभु हम भटके हुए प्राणियों को राह दिखाओ।

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozone Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो. स्टूर ये ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. उजाला Radio. Mail naar info@ujala.nl.
2: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है. उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान.

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता कटा।

कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग, तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: महफिलों के दामनों में साहिलों के आसपास ये सदा गूंजेगी सदियों तक दिलों के आसपास और ये सदा किसकी सदा थी जो ये कहता हुआ चला गया कि तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊँ ये थे जनाब मुकेश साहब जिनके गाए हुए गाने आज तक ताज़ा और ज़िंदा हैं।

0: पुरानी यादों के साथ और सुंदर गीतों के संग बनती है। उजाला रेडियो की प्रस्तुति
1: ए गौरी, कहाँ जा तू सवेरे बस की टाले के। अरे

या इट्स योर बॉय बादशाह और फिल्म का नाम है मेरे हस्बैंड की बीवी और गाना का नाम है गोरी है कलैया या ओके इन कैटेगरी ओ माय गॉड वन मोर रिमिक्स maar dan wel eentje die weer perfect past in deze tijd. Ja, je hoort Bancha samen met Kanika Kapoor en dit is een cover. Legay, Legay samen met Dil to Pagal hai, een heerlijke Hindi mashup gana.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozone Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

7:08 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो है ये और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। जून का महीना है और इस जून महीना का पहला शनिवार और आपका सेवा करने चले आए हैं। अब से करीबन रात्रि में 12 बजे से लेकर प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर 5 घंटे लगातार विद ब्यूटीफुल लोकल सॉन्ग्स, चलता सॉन्ग, सोल सॉन्ग्स, आपका दिल हम बहलाएंगे भरपूर आज के रात फिर एक बार। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज है। आप जहां पर भी होंगे, जिस हाल में आप होंगे, स्वागत करता हूं आप सभी को तहे दिल से। हाँ जी, मौका मिला है आज फिर आपका सेवा करने का, तो लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर फिर हम पेश कर रहे हैं आप सभी के लिए। और ये प्रोग्राम का फॉर्मूला जो लोग सुनते आए हैं उन्हें मालूम है कि जहां मैं स्टार्ट करूं आप ऐप कर सकते हैं हमारे स्टूडियो में, और वो भी नंबर 020-363-9000 पर, 020-363-9000 पर। और जो लोग ऐप करते हैं हमेशा, उन सभी के नाम से 8 बजे के इश्तिहारों के बाद हम एक गीत उनके नाम से चलाते हैं, एक लोकल सॉन्ग जो हमारे पसंद के हैं, हमारी ही प्लेलिस्ट से निकालकर आपके नाम से हम चलाएंगे। उसके लिए आपको सिर्फ हाय हेलो कहना है व्हाट्सएप के जरिए 020-363-9000। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि आप एक चलता नगमा चाहते हैं, ऑफन रुस्त तू जाने तो है। तो है इस प्रोग्राम का फॉर्मूला, और रहे उजाला रेडियो की जो बातें हैं, आप अपना कामकाज दिवाना चाहते हैं उजाला रेडियो के जरिए, तो ये मुमकिन है। आपकी फरमाइशें, जरूरी खबरें, मौत की खबरें, आपकी जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते आप सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे अवश्य तार कर सकते हो। दफ्तर का तार 020-409-0807, 020-409-0807। या अपने कामकाज के लिए जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते आप 24 घंटे 7 दिन लगातार उजाला रेडियो को मेल कर सकते हैं, किसी भी दिन, किसी भी पल, किसी भी वक्त। info@ujala.nl, info@ujala.nl। और मेरे प्यारे सुनोला, और भी बातें हैं आपसे कहने, जैसे कि सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, वहां पर भी उजाला रेडियो मौजूद है। गेट कनेक्टेड विद उजाला रेडियो, जुड़ जाइए उजाला रेडियो के साथ, बन जाइए मेरा दोस्त, हमारा दोस्त। सोशल पर तरह तरह की सूचनाएं जो हम छापते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, आसानी से आप पढ़ पाओगे, अपना कमेंट्स दे पाओगे, उसे डील कर सकते हैं, किसी को टैग कर सकते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, क्या क्या नहीं कर सकते हैं मैं आपको क्या बताऊं। और यूट्यूब चैनल पर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अबोनेरिया वॉन्ट टू अपलोड हिल माल द बेस्ट ऑफ द बेस्ट द मोस्ट फंड उजाला रेडियो कॉन्सर्ट एंटा का लाइस्ट्र तू जाने तो डाउनलोड भी कर सके हम ना जानी माँ बहुत चीज कर सके हैं जब तू कनेक्ट हो जाइए उजाला रेडियो के साथ, वही हम मांगिला बोले। बस मेरे प्यारे सुनने वालों, देखते हैं कि लोग आज कौन है जो मुझे ऐप करते हैं। जिस तरह से ऐप आएंगे आपको मालूम रहे, उसी तरह से हम गीत भी चलाएंगे। फ्रूख ऐप बोफनान इन लाइस एंड इधर एन डी नायाओ कुम या दी कुम ओंदर एंड ऐसे ऐसे हम 8 बजे के बाद लोगों के लिए गीत चलाएंगे। खेव आन ऑफ यू स्नेल नंबर विल ऑफ अन रुस्तख तू जाने तक। चलिए शुरू करें मान, आज का जो नगमा है शुरुआत हम करेंगे
रूपा 3.0 रोहित छेदी हिलावे कढ़ियों चली हिलावे शुभ वीकेंड मेरे प्यारे सुनने वालों, और हिला दे हॉल को नीचे लाइए और मजा ले विथ योर यू आर

Ay boy, tama ka. Nagma si Acha opening ki eh. काफी पॉपुलर नगमा और पॉपुलर भी है गाने वाले रोहित छेदी और नाचने वाले रूपा जी डिफरमासी द स्टार्स। मेरे प्यारे सुनो 18 मिनट गुजर चुके हैं और वो भी 7 बजकर। मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे, स्टेशन का नाम है उजाला रेडियो। प्रोग्राम जो आप सुन रहे हैं सैटरडे नाइट फीवर शुरुआत की है और समापित करेंगे रात्रि में 12 बजे। तो फिर एक बार तहे दिल से स्वागत है आप सभी का, आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और अदापर से। इस एक गीत में लगभग 10 लोगों ने एप किए हैं इतनी जल्दी। जो यह हेलास एक मुद्दू और आंखा खीव कि अगर आप एप करेंगे अब तो आपके लिए गीत हम चला पाएंगे 9 बजे के बाद। तो जाने तो हमार शुल्क ना बा माँ, हम कोई के ना जाबे फोर्थ तरह करे, जैसे ऐप आवे वैसे हम गीत चलावे या तो मेरे प्यारे सुनने वालों एंजॉय कीजिएगा अपना वीकेंड। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप दोपहर को या सुबह को आपने अपना सौदा पानी की है, साफ सफाई की है, पकाए वकाए की है और इस वक्त मजा ले रहे हैं आप ही का फेवरेट स्टेशन के साथ उजाला रेडियो। कुछ चटक मटक आप जरूर से जरूर खाते होंगे और पीते होंगे, कुछ गर्मा गर्म या कुछ तू जाने क्या बोलो के स्प्राक वाटर जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, आलस में मात माँ लेकर खनीत तू जाने तो खत से खनोत मिल मागदार खी फर्सलाफिंग फन। तो मेरे प्यारे सुनो वालों हम अगले गीत की ओर बढ़ चलेंगे और एक टाइटल जो है ये भी स्टार्स का है, रोहित और रायन मिलकर गीत गाएंगे द पगड़ी मिक्स। अरे बाप रे,

अरे बाप रे, पगड़ी मिक्स मेरे प्यारे से नोलो टाइटल इस गीत का जो हमने पेश किया है, रोहित और रायन फन फार्मेसी द स्टार्स। मेरे प्यारे से नोलो, आपको मालूम रहे लेकिन फिर भी मैं कह देता हूं कि इस प्रोग्राम के दौरान आप ऐप करेंगे जब भी स्टूडियो में उपनुल तक दरी नोलाख नोलाख तीन टिटल स्वरूप अस्टिब्लीफ आपको निराश हमें करना पड़ेगा, क्योंकि गीत तो हम चला रहे हैं लोकल्स, मतलब ये कि बहुत सारे नगमाएं ऐसे हैं, ज्यादा से ज्यादा तो फिल्मी सॉन्ग्स होंगे जो लोगों ने फिर से बनाए हैं, अपने ही रंग और ढंग में सजाए हैं, और मैं पेश करता हूँ जैसे कानीता स्पेसिफिक फिल्मी सॉन्ग्स तो हम चलाएंगे नहीं और ओरिजिनल सॉन्ग्स भी नहीं चलाएंगे, ये एक लोकल प्रोग्राम है, तो गाने जो फिर से गाया गया है बस वही नगमाएं हम गाएंगे, चलाएंगे, गाएंगे नहीं एकानित सिंह। एक डुएट वाले प्रोबेबल वाले सिंह और फोराल बात कामर में तो जाने तब खालम हुआ मारे ऐसे एको तब बहुत बीस साल लगे मार जहां हम निकस गए ली बात कामर वहां से। अरे भैया तो देखिए कैसे सब कोई भागे। हाँ सच्ची बात है, देखिए स्टूडियो में सब हमें हंसे हैं। मा वी फाइनली हैव डन मैन से डे या नी मंथ या एक अप्रैल से डे। मेरे प्यारे से लोगों, अगले गीत की ओर आपको ले चलेंगे, द सोना या सोना सोना हो सोना सोना में शिव हियर ऑन यू आर। मेरे प्यारे से लोगों, सैटरडे नाइट फीवर, शुभ वीकेंड आपको कहते हुए आप भरपूर मजा ले विथ योर यू आर।

Ja, beautiful, Mary Pierson al de Suna Meship hier aan die waar. Mary Pierson al 020-363-0808. Ja, maar heb ik app karna hè. Oude programma. चल रहे हैं कुछ कम आधे घंटे और आपको हम इतला दे कि लोग ऐप कर रहे हैं 8 बजे के इश्तिहारों के बाद हम सभी ऐपर्स के नाम से गीत चलाएंगे एंड या ये सीट न्यू आल से खत है इन द ब्लॉक के फन 9 तो 10 मेरे प्यारे सुनो ले चलते हैं गीत की ओर और संवलिया इस गीत का टाइटल है चलो सुनते हैं क्या सवाल जवाब हो रहे हैं

इरफान बुधराम मेरे प्यारे सुनने वालों, झलका झलका मेरे प्यारे सुनो, घड़ी की तरफ मैं एक नजर रखूं तो 9 मिनट गुजर चुके हैं और वो भी 7:30 बजकर। उम्मीद और आशा करते हैं कि ये चलता नगमाएं जो पेश हो रहे हैं आप सुनते वक्त भी पसंद करते होंगे। सभी जितने भी हमने चलाए अब तक अलमाल फंडित यार एंड अलमाल या फनोट 20 से 20 और जो अभी कुछ बचाएंगे इस घंटे में सभी 20 से 20 के लोकल्स हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि प्रोग्राम में पुराने लोकल्स नहीं है, कुछ बहुत ही खूबसूरत पुराने लोकल्स चुन चुन कर सेलेक्ट सेलेक्ट करके लाया हूँ आज प्लेलिस्ट में है। और इधर उधर मैं कुछ ना कुछ निकाल कर भी पेश करेंगे जरूर। वहां नारन मोय त्रिनी पोप की 100 साल पहले शायद तुम्हें मुझसे प्यार था और मुझे तुमसे इंदर कन्हाई और किमलिन पेश करता हूं।

या इंदर कन्हाई और किमलिन भुटरा मेरे प्यारे सुनने वालों, सूरी शिव प्रसाद और राजीव हरी की आवाजों में एक और ट्रेनी पॉप।

या ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनालो यकीनन सूरी शिव प्रसाद और राजीव हरी ने जो गाए हैं। चलो एक और त्रिनी पॉप पेश करूं आपकी बार भांगड़ा मैडनेस और ये गाने वाले हैं रूपा मेरे प्यारे सुनालो रूपा 9303639008 जहां पर आपको ऐप करना है हाय हेलो कहना है और आपके नाम से गीत हम चलाएंगे जरूर से जरूर एक लोक

या मेरे प्यारे सुनो, ब्यूटीफुल भंगरा मैडनेस और धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे सुनो वालों। 8 बजे, अभी 8 बजे होंगे, इश्तिहार आप सुनेंगे देश विदेश का समाचार, मौसम का हालात और सड़क का क्या हाल है, और तमाम सूचनाओं के बाद सेवा में फिर हम हाजिर रहेंगे लेकर ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। लगातार चाहे रिक्लाम हो या ना, चाहे गीत चल रहे हो या ना, लगातार आप ऐप कर सकते हैं 023 3 0 0 0 हाय हेलो कहने के लिए। आपका शुभ नाम जानना बहुत जरूरी है और आप कहां से ऐप कर रहे हैं इन ओक मखिया हमें बतावे कि तू कौन सी मांगे सुने, रुस्टक नंबर ऑफ स्नेलर नंबर कुछ ना बताइए तब हमार चॉइस रही, तू जाने दो। जिया और अनूप रामबरन, बाप और बिटिया, सुना रहा हूं गीत तुमसे

मेरे प्यारे सुनो, आखिरी गीत इस घंटे का हम आपको सुनाने जा रहे हैं, और इस आखिरी गीत के बाद मैं आप सभी को ले चलेंगे ब्रेक की ओर, और ब्रेक के उस पार आप सभी से फिर जरूर से जरूर हम मिलेंगे। दट साल ongeveer 5 over 8 सैन फिर हम देखेंगे कि कौन है जिन्होंने कश उठाए हैं ऐप करने के लिए स्टूडियो में, उन सभी के नाम से हम गीत चलाना शुरू करेंगे। एक आखिरी गीत, उसके बाद ब्रेक।

जहाँ है तुमको चाहूंगा हरदम, मड़के भी एक पल ये प्यार भी ना होंगे कम। बहुत ही खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनवालों, जो फिर से गाया और सजाया गया है आप तक, हमने पेश किया है आप ही का मनचाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनवालों। और 12 मिनट गुजर चुके हैं, वो भी 8 बजकर। मैं हूं आपका यारो कया रतन राम दुलारे पांडे और सैटरडे नाइट फीवर पेश कर रहा हूं यूआर के स्टूडियो रतनाम से। और प्रोग्राम में द लोकल्स की ये प्रोग्राम में जो 12 बजे तक आपका साथ हम देंगे इस प्रोग्राम लेकर, बस आपका साथ चाहिए। और काफी लोगों ने ऐप किए हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, बहुत सारे लोगों ने ऐप किए हैं 020-3639-9 पर, और उन सभी के नाम से यहां से हम शुरू करेंगे गीत चलाने के लिए। और एक गीत के बाद हम आपको भी बताएंगे कि किस तरह से ये महीना जून में हम आपके लिए हम किस तरह से प्रोग्राम बनाएंगे, कौन कौन सा दिन हम रहेंगे, कौन कब नहीं, तो इस गीत के बाद हम आपको जरूर इतला देंगे। हार्लेम शहर का आइलिन मेरे प्यारे सुनने वालों हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं, पावर करते हैं, सुनते हैं यूआर को, उसके लिए दिल से धन्यवाद, धन्यवाद आइलिन जी को हम कहते हैं जो हार्लेम में रहती हैं। तो आप के लिए गीत हमने जो तैयार करके रखा है शेखर कुमार की आवाज में, एक नगमा आइलिन के नाम, आइट हार्लेम।

शिखर कुमार मेरे प्यारे सुनने वालों, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों जो हमने आप तक पेश किया है, और यहां स्टूडियो के बाहर मेरे प्यारे सुनने वालों हम देखिला खाली काली काली बादल आवे है, और जब काली बादल आवे है तो तू जाने कौन सी गिरी, तो बरखा बरसी या सीतरम बीच या बीच का बोली क्राइस है मार या नतूर के भी नोडक है तो इस बरसें दे। हम जहां पर है और उम्मीद और आशा करते हैं कि आप भी जहां पर होंगे, घर में शायद काम कर रहे होंगे, शायद मोटर कार में बैठे होंगे, वंत धेड़ हमारे जो भाई लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम, ट्रेन चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं इत्यादि, तो वहां पर सुन रहे हैं प्रोग्राम। और मुझे मालूम भी है काफी लोग हैं ऐसे जो काम करते वक्त भी चून किए करते हैं, अब यू आर तो दिल लगाकर काम करना, और कहीं सड़क पर आप हिस्सा ले रहे हैं तो संभाल के, और जो लोग इस वक्त घर पे मजा ले रहे हैं या अथवेश जीर तो खाओ तय तुम दिशा रहा मैट यू आर जाने तो ये कान खून ये फेश फिर एंड अंदर रेडियो आंदोलन, और आप नगमाओं पर नाच सकते हैं, या फिर डीजे नोडक एखी बैंड नोडक। शौकत के लिए चांदरा ने कहा एक गीत मैं चला दूं। होरन से चांदरा जी के ऐप आए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चांदरा ik heb het nog niet erg goed geluisterd, niet helemaal, maar titel जो है हमें बहुत बफाल कर है, प्यार में तेरे, और गाने वाले हैं one of the finest singers हमारे हॉलैंड के अंदर में सागर मलिक, dus ja, het kan niet anders dan dat het een mooie nummer is, और प्यार का नगमा जहां तक मेरा ख्याल है ये गीत है, तो ये सुंदर सा नगमा आपके साथ चांदरा जी और शौकत के साथ हम भी सुनने जा रहे हैं। एंजॉय योर वीकेंड और डंकी वेल आपके लिए।

कभी गुजरी थी कुछ सांसें तेरे साथ, लगा था कि झील है जिंदगी मैंने, इन चंद सांसों में पर न जाने कहां खो गए तुम। अब तो सिर्फ तन्हाई की चादर में लिपटी हुई तेरी यादों के सहारे जीते हैं। हाँ, पर इतना जरूर यकीन था और है कि एक न एक दिन तुम जरूर मिलोगे। वापस आ जाएंगे दिन जो गुजरे थे हमारे।

सागर मालिक, मेरे प्यारे से नालो सागर मालिक, प्यार में तेरे पागल हुए है एकदम फर्स्ट फन अफेयर्स, मेरे प्यारे से नालो एंड हियर मेटीन ऑफ यू आर उजाला रेडियो। एपर्स के लिए गीत चला रहा हूं मेरे प्यारे से नालो, और ये खूबसूरत गीत हम चला रहे थे सागर मालिक जी का, और मैंने देखा कि अरे I thought names were here लिख, और पता क्या है, ये जो काली काली बादल जो छाए थे पास हो गया स्टूडियो से, अब जा रहे हैं उस पार, नो वे तक नहीं तो उस पार इस मारे थे सीनर खफाल रिख्टिंग क्या बोले प्रिंस अलेक्सेंडर, तू जाने तो खौडा के कही थी, तो हम सोचिला कि ऐसे जब रही तो शायद यहां बरसात नहीं होने वाले हैं। लंकीवाल सागर हटा दिया बादल को। रोटरडम शहर में प्रणाम से आनंद ले रहे हैं राकेश जी और नताशा जी, तो राकेश एंड नताशा ओक इंच फर्स्ट वन पेयर्स हम आप तक पेश करने जा रहे हैं, और गीत गाने वाले हैं एशली एसमे वन फार्मेसी टू फेमस, और इनका नया गीत राकेश जी के लिए और नताशा डंक यू वेल फॉर अ टेप एंड एंजॉय योर वीकेंड, तू जाने तो

स्पेशली एसमी मेरे प्यारे सुनने वालों, खूबसूरत गीत इनकी आवाज में, एन हुसैदा दून है गाने मिक्स करके, औसत खूट खदान वर्दन प्राख्तक, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा भी इसमें शामिल किया है। आलस बनिया फन में चार मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, सरे 8:00 023 जहां पर आपको ऐप करना है। और मेरे प्यारे सुनने वालों, हम आपको बताना चाहेंगे कि हम किस तरह से प्रोग्राम सजाएंगे इन दिनों। 7:00 के बाद हो रहे हैं प्रातकालीन उपर 7:00। आज मैं हूं 13 June and 20 June बैने करनीत, और 27 June जो है आखिरी शनिवार इस महीने का, तो वो शनिवार हम रहेंगे। जैसे मैं न्यू द एर्स्ट एंड द लास्ट 7 June मैं प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर, 13 June and 20 June हम नहीं रहेंगे सेवा में। और रहे बात बैक टू द फ्यूचर का, तो हम अवश्य पेश करेंगे ऑफ द 10th एंड नेचुरली 17th एंड 24th June। मार दिल की आवाज डोनरडाग 11 पेश नहीं करेंगे, तो दिल की आवाज आप फिर सुनेंगे 18 June एंड नेचुरली 25 June को भी पेश करेंगे दिल की आवाज। Here on you are। ik zal het later nog een keer wel herhalen कि आप जान ले, मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग प्रोग्राम के इंतजार में चून किए करते हैं, और ऐसा ना हो कि आप निराश हो कि मैं नहीं हूं, इसलिए आगे से हम आपको इतला देते हैं। आरएनएम शहर में शारदा रहते हैं, शारदा डंकीवेल आपके ऐप के लिए बेहद खुशी है हम कि आप ही वहां चून किए हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं अपना वीकेंड और उजाला रेडियो को। सैटरडे नाइट फीवर का ये प्रोग्राम में अब आप के लिए गीत हम चलाने जा रहे हैं, और प्रवेश मठोड़ा फन फरमात सी नो मर्जी गीत गाएंगे शारदा के लिए। आइट आनंद

तू मुझे सोच कभी और तुमसे यूं मिलेगी। प्रवेश मठोड़ा जी, फन फरमाद सी, नो मर्जी हमने आप तक पेश किया है मेरे प्यारे सुनने वालों। मेरे प्यारे सुनने वालों, आपको मालूम रहे जिस तरह से डोंक रखा ऑर्डर हियर विद द स्टूडियो, पता नहीं क्या हो रहे हैं, गुस्साएगी हुई शायद तब फिर वापस आए पता ना। वहां सीन अगर बरसेंगे तो बरसने दो, या तो मेरे प्यारे सुनो, als u geappt heeft, graag geduld houden en hebben, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले गीत में जो हमने शुरुआत की है ऐप की है, और हमने आप सभी से कहा था दतिक नाम एन इर्स्टली चाल सूफेर वास दत हेल बुल मेंस दी दारना साउडे ऐप पस ना नेगे उर आन द बूर्ट कोमन। दुस ग्राग बेचे गदुल्ड इस द मेंस दी लाटर हैबे गेऐप्ट दी सिटन सेल्स इन द ब्लोकी फन 10 टू 11 क्या करूं। लक्ष्मण जी हमारे जो प्रिय स्कीवनिंग में रहते हैं, भैया लक्ष्मण जी आपके ऐप भी आए हैं। अगले गीत मैं आपके नाम करने जा रहा हूँ और उम्मीद और आशा करते हैं कि आप एंजॉय कर रहे हैं यू आर और अपना वीकेंड, और लक्ष्मी जी तो हमारे दिलों में है। धन्यवाद आपके ऐप के लिए एंड एंजॉय दिस सॉन्ग लक्ष्मण जी के लिए। और गाने वाले हैं मोहम्मद अरशान।

मोहम्मद अरशान मेरे प्यारे सुनो वालों सेवा में अपना खूबसूरत आवाज में गीत गाकर सुनाए हैं मुझे दिल से ना भुलाना और वो भी चाहे रोके ये जमाना। उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनने वालों और सैटरडे नाइट फीवर आप सुन रहे हैं लोकल का ये प्रोग्राम जिसमें रिफाइनर्स लोकल्स आप तक हम पेश किया करते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप सुन रहे हैं नए लोकल्स जो इन दिनों रिलीज हुआ है और खास करके ये साल में रिलीज हुआ है और इधर उधर हम एक पुराना वाल भी शामिल करते हैं। रिया कल्लू जी प्रणाम से जुड़े हुए हैं आमस्टरडैम शहर में बातूफा दौरप में भी गए और चून किए हुए हैं उजाला रेडियो पर सुन रहे हैं प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। तो रिया कल्लू जी को हम कहेंगे धन्यवाद थैंक यू वेल चून करने के लिए एंड नटुलक फॉर योर एपियर एंड ब्लेव द लुकडिंग्स दून वंट। ये जिंदगी जो है हमारी बहुत छोटे हैं हमें हर पल एंजॉय करना है। एक गीत हमने तैयार करके रखा है रिया जी और वो मैं आपके नाम करता हूं Enjoy this song. Enjoy your weekend.

Ja, beautiful, mi ripiarisce no? Jesse style. Nagma. A moje Jesse Blue style. Duet, जो आप तक हमने पेश किया है मेरे प्यारे सुनो इस घंटे का आखिरी गीत इस आखिरी गीत के बाद खाना द ब्रेक फन 9 uur और तमाम सूचनाओं के बाद दैट इज सो रोंट 4 over 9 आपकी सेवा में फिर हम हाजिर रहेंगे और ये आखिरी गीत इस घंटे का आईफी जहांगीर के नाम करता हूं जो आमस्टरडम में हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं पावर करते हैं सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए आईफी डंकीवेल दिल से ये नगमा आईफी के नाम और मेरे प्यारे से इस गीत के बाद ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के उस पार

Ja, prachtig. Ikdom vers van de pers, met de pjeris in Wallo. Vishal Hira. Met de Hira Brothers. Ikdom naya Hamari Rania. Or meteen hier op You Are. मेरे प्यारे सुनो 10 मिनट गुजर चुके हैं और वो भी 9 बजकर एपर्स के नाम एक घंटे हमने गीत चलाए हैं और इस तीसरे घंटे हमारे ये प्रोग्राम का खाओ खूं फेडर मेटों स्लैश मेट एपर्स आप भी चाहते हैं कि आपके नाम से गीत मैं चलाऊं दन मुझे एखन एपना 020-363-0808 En heb alstublieft geduld, want is ganti me aapka gi to filhal hum nahi chala payenge. Dus iedereen die nu gaat appen, komt in het blokje van 10 tot 11. Aur 11 uur se ratri me 12 baje tak, dan gaan we alleen maar soul nummers draaien. Of in ieder geval soul romantic songs. Doe je aan het dag. रोसिता जी आयत अलमेरे आप नाचना चाहते हैं तो एक गीत जो काफी मशहूर बुक बुक इसका एक वर्जन हमारी नजर में आए हैं तो हमारे दिल की घंटी ने कहा डिंग डोंग हमने सोचा क्यों ना ये नगमा हम रोसिता जी के लिए चलाएं आयत अलमेरे दंकीवेल आपके ऐप के लिए एंजॉय दिस सॉन्ग एंजॉय यू आर एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर एंड नेचुरल की वीकेंड

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनो वालों, डिंग डोंग दिल डोले। मेरे प्यारे सुनो, ये गीत फॉर्मेसी फेस टू फेस का था। बस्तात नहीं मेर मारी के बकरी पर अच्छे बैरकार कोम फोर फॉर इट स्पेशल्स। Verder heb ik geen informatie hierover, maar het zou wel leuk zijn. हम आप सभी को ले चलेंगे अम्स्टेलफीन की ओर, मेरे प्यारे से नवालो। अम्स्टेलफीन में भी सुन रहे हैं प्रोग्राम सुशीला चंद्रिका सिंह जी, समधनिया हमार हरदम चुन किए करते हैं, मजा ले रहे हैं और हमेशा भी ऐप करते हैं, तो आपकी ऐप के लिए बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेल। एंजॉय सुशीला चंद्रिका सिंह जी, एंजॉय दिस प्रोग्राम। आपके लिए जो गीत हम चलाने जा रहे हैं उसको भी आप भरपूर एंजॉय करें। एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर, एंजॉय योर वीकेंड। द सिंगर ऑफ रोमांस बिस महाबीर।

या ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनो वालों, जुल्फों की कहानी है, नगमों की निशानी है और भरपूर ये जवानी है। नाइट इन लंदन, या लंदन इज इन मोस्ट टच मेरे प्यारे सुनो वालों। बहुत ही जल्द कोशिश करूंगा वहां जाने के लिए, एक कुमरा रख रहा और काफी मजा हम ले रहे हैं वहां। खूबसूरत गीत जो बीस महावीर द सिंगर ऑफ रोमांस ने गाकर सुनाए हैं, नाटुलक इस देश खावा अवर, जहां तक मेरा ख्याल 1987-88 का एक एल्बम है। अगले गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, हम पेश करने जाएंगे द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागी हुसैन, गीत गाएंगे लता का एक नगमा है और गीत को हम नाम करेंगे वहां ऊपर ब्यूटीफुल सिटी ख्रोनिंगर में जो रहते हैं और वहां से जो ऐप आए हैं बेटी जी का, तो बेटी जी डंकीवेल, बेटी जी भी एक सुनने वाले हैं जो काफी मजा लिया करते हैं और हमेशा जब भी मौका मिलता है बेटी जी सपोर्ट करता है, ऐप करता है, उसके लिए दिल से डंकीवेल बेटी जी। फैन चफना रफ्तम बिन और उमर की आवाज में ये नगमा, बेटी जी आपके नाम, एंजॉय और एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर।

जब भी याद आओगे ये दिल भराएगा। द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागी तुसेन की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, लता जी का ये नगमा इन्होंने फिर से गाए हैं, सजाए हैं, आप तक हमने बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ पेश किया है। सरे नौ का वक्त है मेरे प्यारे सुनने वालों, स्टूडियो टाइट 3:30 और एपर्ट्स के नाम गीत हम चला रहे हैं। आप ही चाहते हैं कि आपके नाम से गीत चलाऊं, अभी मौका है 0 20 3 0 0, लेकिन आपको मालूम रहे दैट यू इफ क्लेम बीच खडूल मुत है और शायद आपके गीत हम चला पाएंगे इन द फॉलोइंग ब्लॉक फ्रॉम 10 to 11, ठीक है 0 20 3 0 0। डनार शहर में सुन रहे हैं मिके जी, थैंक्यू वेल मिके, हमेशा भी आप ही चून किए करते हैं, सुनते रहते हैं प्रोग्राम को और सपोर्ट करते हैं, उसके लिए दिल से थैंक्यू वेल, शुक्रिया, धन्यवाद। आपके ऐप के लिए हम अगले गीत चलाने जा रहे हैं, यही उम्मीद और आशा के साथ कि मिके आप पसंद भी करेंगे सुनते वक्त। एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर एंड एंजॉय यू आर एंड योर वीकेंड।

दिल ने ये कहा है दिल से, और वो भी मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरी दिल पर मेरा एतबार कर लो। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, मुंह ये हिल कर रहेगी फ्लेवर हियर ऑन यू आर सैटरडे नाइट फीवर में मेरे प्यारे सुनने वालों। एंड याहूर अट इस खान रीख रही बारिश हो रहे हैं रोटरडम शहर में। एंड एट वाइट बहुत खूबसूरत लग रहे हैं भी देखने के लिए। अशिशो डोर अतराम के बारिश मुझे सुरिनाम से बहुत पसंद है। अले हीर या हीर इस वक्त काउट इन ये कानर सिख दार दो राख एक सिख हम में एक आठ द्रुपल जब लग गए तो भैया मुश्किल वीरस्तान है वही ना वीरस्तान। मेरे प्यारे सुनो लो देखो तू, अब हम आपको गीत सुनाने जा रहे हैं। वंस अगेन द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागी तुसेन, लता जी का एक नगमा सेवा में अपने ही रंग और अपने ही ढंग में ये गीत गाएंगे और इसे हम नाम करेंगे जिनका जन्मदिन थे और हिल खसल खात खिस्तर इफोन दौलत जी अडनाग नॉकमाल्स नाम द हिल क्रू फन यू आर बधाइयाँ शुभकामनाइयाँ सालग्रह मुबारक हो। ये गीत इफोन दौलत जी आपके नाम करता हूँ द किंग ऑफ हिंदी पॉप। एंजॉय एंड थैंक यू वेल फॉर योर अपीयरेंस।

अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। खूबसूरत गीत लता जी का और उमर वागित हुसैन किंग ऑफ हिंदी पॉप की आवाज में इन्होंने अपने ही रंग और ढंग में सजाए हैं गीत और हमने आप तक पेश किया है। वहां न मार्स ब्रुक मेरे प्यारे सिनेवालो, वहां पर भी बेती जी सुन रहे हैं प्रोग्राम। एंद्रू जी इस लेकर खान डाम और घर पर इत्मीनान बैठकर रिलैक्स एक बहुत ही दुख दिन के बाद एंजॉय कर रहे हैं। उजाला रेडियो चित्रा जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए। और ये गीत मैं फिर भी आप दोनों के नाम करता हूँ, हेरेंद्र और चित्रा जी और मार्स ब्रुक। एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय दिस सॉन्ग।

या ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, एक आखिरी गीत पेश करने जा रहा हूँ। इस आखिरी गीत के बाद ब्रेक होंगे, ब्रेक के उस पार एपर्स के नाम फिर गीत हम चलाएंगे। एंजॉय, स्टे ट्यून्ड।

दिस इज यू आर मेरे प्यारे सुनने वालों, वेलकम बैक। महेंद्र को आप सभी ने सुने, जब से तू मेरी जिंदगी में आया, मैंने फरमाया सीधे इंडियन टेम्पटेशंस। 10 मिनट गुजर चुके हैं 10 बजकर। मेरे प्यारे सुनने वालों, आपका मनचाहत और फेवरेट स्टेशन है ये उजाला रेडियो, द वीकेंड वाइब्स, सैटरडे नाइट फीवर, लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से पेश हो रहे हैं आज इस पहला शनिवार महीना जून का। और जैसे आप सभी से मैंने कहा, मेरे प्यारे सुनने वालों, जून महीना में कुछ प्रोग्राम हम नहीं सजा पाएंगे। आज मैं हूँ, शनिवार की बात मैं कर रहा हूँ, तो आज शनिवार 6 तारीख को मैं हूँ, अगले शनिवार 13 और उसके बाद 20 जूनी, 13 एंड 20 जूनी ऑफ द 7 दख बेनिकर दानीत, और आखिरी शनिवार जो है 7 एंड 20 जूनी, 27 तारीख जून को हम ये प्रोग्राम फिर सजाएंगे। और अगले हफ्ते हम प्रोग्राम दिल की आवाज नहीं पेश कर पाएंगे ऑफ द डोंदरख, बैक टू द फ्यूचर लगातार पेश करेंगे 3, 17 एंड 24 जूनी, लेकिन दिल की आवाज 11 तारीख को मुश्किल पड़ेगा। Met andere verplichtingen heeft dit allemaal te maken.

फुकी एपर्स के नाम गीत हम चला रहे हैं लगभग 2 घंटे हमने की और इस घंटे में भी लोगों के लिए गीत हम चलाएंगे। एंड देयर इज नो स्टेज रुमते आप ऐप कर सकते हैं 03-3963-9000 लेकिन आपको मालूम रहे कि आखिरी घंटे में एंडार द्रैख तत नार्तू की अगर आप इस वक्त ऐप करेंगे तो आप आखिरी घंटे में आएंगे इन द ब्लॉक फन 11-12 तो उस ब्लॉक में खाओ आली मसूल नंबर सराय तू जाने तो 03-3963-9000 अगले गीत मेरे प्यारे सुनने वालों शिव किशोर सिंह जी के लिए धनहाग जो प्रोग्राम के साथ आनंद ले रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी आपके ऐप के लिए। हम न जाने तू क्या करे है धनहाग में इस वक्त लेकिन आपको उठना पड़ेगा नाचना पड़ेगा क्योंकि वीकेंड है शनिवार है आपको एंजॉय करना पड़ेगा ना सिर्फ इस गीत को यूआर को सैटरडे नाइट फीवर को लेकिन अपना वीकेंड को भी। जस्ट थैंक यू वेल एंड एंजॉय।

विश गणपत सिंह मेरे प्यारे सुनने वालों, अपना बैठक गान और वो भी आज इस शनिवार 6 जून को पेश किया है हीरो निवार सैटरडे नाइट फीवर में। मेरे प्यारे सुनने वालों, यहाँ स्टूडियो में खसलख है और उम्मीद और आशा करते हैं कि आप जहां पर भी हैं बहुत खसलख होंगे। वीकेंड है मेरे प्यारे सुनने वालों, वीकेंड में सभी एंजॉय करते हैं, मजा ले रहे हैं अपने अपने ही रंग और ढंग में। एट इस 3 मिनट ऑफ 4 o'clock फन हाल ऑफ 11 सरे 10 बजने में 10 मिनट बाकी है और आपको ले चलते हैं अगले गीत की ओर। प्रभा जी आमस्टरडम सेंट्रम में जो सुन रहे हैं प्रोग्राम, वहां से आनंद ले रहे हैं, तो प्रभा जी के नाम अगले गीत हम करेंगे। ये कहते हुए कि बहुत बहुत धन्यवाद आपके आपके लिए। एंजॉय दिस सॉन्ग, एंजॉय यू आर, एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर एंड एंजॉय योर वीकेंड।

ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सिनेमालो हीरान यार। पहली नजर में क्या जादू किया, तेरा बन बैठा मेरा ये जिया। मोहब्बत बहुत खूबसूरत चीज है मेरे प्यारे सिनेमालो, अगर हो जाए तो एंजॉय करना भरपूर। तू जाने दो। गायत्री प्रोग्राम सुन रहे हैं। गायत्री जी आई ब्रेडा डंकी वेल आपके ऐप के लिए एंड फॉर ये खडोल्ड नेटवर्क डंकी वेल ओक फॉर द टॉप स्टेम ऑफ यू आर एंजॉय योर वीकेंड। अगले गीत आपके नाम करता हूँ, एक पॉपुलर सॉन्ग है, उन दिनों काफी पॉपुलर थे और उम्मीद और आशा करते हैं कि आज भी जबकि हम चलाने जा रहे हैं आपके लिए आप भी एंजॉय करेंगे। द सिंगर ऑफ रोमांस बिस्मा।

ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनालो बन के साथ ही प्यार की राहों में हमसे कभी तुम ना जुड़ा होना। द सिंगर ऑफ रोमांस बीस महावीर जी की आवाज।

मेरे प्यारे सुनोलों, मैं देखता हूँ घड़ी की तरफ तो 2 मिनट गुजर चुके हैं सरे 10 बजकर, और ले चलता हूँ आपको अगले गीत की ओर। ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग जो गाएंगे फासिल वागित हुसैन ऑफ द वेल जैक, और ये गीत को हम नाम करेंगे जो प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, कमला अहित अल्फनंद रैन डंकीवेल आपके ऐप के लिए। एंजॉय योर वीकेंड कमला, एंजॉय दिस सॉन्ग, एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर एंड एंजॉय यू आर।

तुम ही तुम हो मेरी निगाहों में, और तुझको मांगा मेरी ये पनाहों ने। फसल वागित हुसैन ऑफ 12 जैक की आवाज में गीत हमने आप तक पेश किया है मेरे प्यारे सुनने वालों, हियर ऑन यूआर सैटरडे नाइट फीवर में लाइफ एंड आर की वार के स्टूडियो रतसाम से जो पेश हो रहे हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। वीकेंड है एंड आवन इज नॉक यंग, बाहर क्या हो रहे हैं कुछ मालूम नहीं, फोकस में रेगन तक नॉक स्टेट्स क्योंकि अंधेरा सा छा गया है एंड ओर लिख सी एक नीत एंखलक बैठे वत

वाइस जो अमस्टरडम में रहते हैं लेकिन इस वक्त स्पंस बतिया रहे हैं मुझसे, बुएनस डियास, क्योंकि स्पाइन में है, अलिकांट में है, तो भरपूर आप एंजॉय करें। और उम्मीद और आशा करते हैं कि माइस जी वहां स्पाइन अलिकांट में मौसम का हाल और भी अच्छे होंगे यहां से, और इतनी दूर जाकर भी आप चून किए हुए हैं उजाला रेडियो पर, दिल से धन्यवाद, थैंक यू वेल। अगले गीत नतुलक आपके नाम हम करेंगे, और मैं देखता हूँ एक मैशअप है जो डफरमान सी गुड फाइब्स गाएंगे, और ये सब क्या गाएंगे माइस, एंजॉय एंड नॉर्मल्स खनीतरफान नई मरफान एंड बुएनस डियास ओले ओले ओले, ओले।

Yeah, beautiful. Mary Pierre is in all. Measured by Good Vibes, the formatie Good Vibes. अगर गीत अच्छे रूप में सजाया गया तो मुझे पसंद है, वरना बेकरार ये दिल मेरा। यही सोचेंगे कि वो एक कातुलों कर ले। लेकिन ये अच्छा था, एक बार वीकेंड में सूट करता है ना। द गोल्डन गर्ल्स इस वक्त एस्टेपोनस पाये में है। मरखरित उमर जी, मालती जी, बेया जी और फेमिया हेरवाल्डो को घर छोड़कर ये गोल्डन गर्ल्स एंजॉय कर रहे हैं एस्टेपोनस पाये में। और क्यों ना करें एंजॉय, जिंदगी है मजा लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो डायमंड्स थैंक यू लोयल फॉर द अफस्टेम। बहुत आज तो लोगों घूम ले, अब घरे इत्मीनान से रिलैक्स आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। यू आर ये प्रोग्राम के साथ आप सभी आनंद ले रहे हैं। एक गीत हमने तैयार, एक है फ्लावी डे बहुत लीचे खात। एक फिर टीटल अली नाल मोई नीरा हरि प्रसाद और बुधराम पेगी भी साथ देंगे, पेगी शिव प्रसाद अनहेल्ड कमोय त्रिनी पॉप फॉर द गोल्डन गर्ल्स।

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनोलो, और तुरंत आपको ले चलेंगे अगले गीत की ओर, और इसे हम नाम करेंगे सुनील। अय ताम सनाम नंकीवाल सुनील अल्टाइट पावर ये ओक मैं आप एप करते हैं हमेशा दिल से नंकीवाल एंजॉय योर वीकेंड एंड एंजॉय दिस सॉन्ग सुनील अय ताम सनाम सुबी मर जाना

या ब्यूटीफुल सुबी की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, मर जाना आप सभी ने सुता अतिस टुगेदर विद फार्मेसी एलिगेंस। इस घंटे का आखिरी गीत पेश करने जा रहा हूं मेरे प्यारे सुनने वालों, और इस घंटे का आखिरी गीत टोनी इसरी के नाम अयताल मेरा। थैंक यू वेल टोनी फाइंड द चाफ कस्टम बैंड। एंजॉय यू आर एंजॉय योर वीकेंड एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर, और खास करके एंजॉय द सॉन्ग जो आपके लिए हम पेश करने जा रहे हैं, द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागी तुसैन मैथन हेर लकन उमर। इस घंटे को छोड़ने के लिए और आपके नाम करने के लिए एंजॉय।

फरहनास चिराग अली की आवाज, आवाज दे कहाँ है, मेड फरमासी द रॉयल्स म्यूजिक बैंड। दिस इज यू आर मेरे प्यारे सुनने वालों, पांच घंटे का ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर का आखिरी घंटे मान पर है, और इस आखिरी घंटे में रात्रि में 12 बजे तक ओनली सोल्स मेरे प्यारे सुनने वालों, सिर्फ सोल नगमाएं।

अगले गीत मेरे प्यारे सुनो, हम जो पेश करने जा रहे हैं, जो हमेशा हमेशा सपोर्ट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, एंजॉय करते हैं, चून किए करते हैं, एकदम दूर वहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, दूर टेक्सस में अजय और सुनीता प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, और उनके साथ साथ भी बहुत सारे लोगों होंगे जो इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। तो अजय और सुनीता, बहुत बहुत धन्यवाद डंक के वेल चून करने के लिए आपके ऐप के लिए। एंजॉय योर सैटरडे, एंजॉय यू आर, एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर एंड एंजॉय दिस सॉन्ग जो स्पेशली आप सभी के लिए वहां टेक्सस यूएस ऑफ ए में जो है इस वक्त आप सभी के नाम करता हूँ।

संजय योढ़ा मेरे प्यारे सुनने वालों, संजय योढ़ा की आवाज सुनो ना सुनो ना सुनो ना। दिस इज यू आर मेरे प्यारे सुनने वालों, 5 मिनट बाकी हैं सरे 11 बजने में, 5 मिनट 4 o'clock फन हाल्फ 12, 12 बजे तक आपका साथ हम देंगे मेरे प्यारे सुनने वालों। और अगले गीत जो हम पेश करने जा रहे हैं अम्स्टरडम का सत्या जी के लिए, सत्या जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेल आपके ऐप के लिए। गीत जो हम चलाने जा रहे हैं निजाम वागिद हुसैन गीत गाएंगे और आप भरपूर एंजॉय करें, एंजॉय करें इस गीत को, यू आर को, प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर को, एंड नटूलक आपके वीकेंड। थैंक यू फॉर योर एप सत्या।

निसाम वागी तुसैन मेरे प्यारे सुनौलो, तुम मिले दिल खिले और जीने को और क्या चाहिए। ब्यूटीफुल सॉन्ग सेवा में हमने जो पेश किया है महेंद्र कपूर का एक नगमा, काफी पॉपुलर सॉन्ग, फिर से गाया और सजाया गया है। हियर ऑन यू आर सैटरडे नाइट फीवर में पेश करता हूँ। एंजॉय।

जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। लकी सिंह मेरे प्यारे सुनो वालो, मैथसाइन रेडुन खूबसूरत गीत इन्होंने फिर से गाए हैं, सजाए हैं। प्रेम और प्यार के साथ आपकी सेवा में पेश हमने किया है मेरे प्यारे सुनो वालो। अच्छे 3 मिनट ओवर क्लॉक फन हाफ 12 सरे 11:10 गुजर चुके हैं। सागर मालिक जी को हम पेश करते हैं प्रोग्राम में, हमें तुमसे प्यार है गीत का बोल, हीरो निवार सैटरडे नाइट फीवर में।

सागर माली की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, खूबसूरत गीत, वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स हमारे हॉलैंड के अंडर में सागर मालिक जी। अगले गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे, अमोय अमोय प्रोडक्शन फ्रॉम डीजे ला फिएस्टा।

Ja, beautiful song, mijn pianist in hallo en prachtig. Productie van DJ La Fiesta. मेरे प्यारे सुनो लो वक्त आ गया कि मैं आखिरी गीत आप सभी के सेवा में पेश करूं। पांच घंटे का ये प्रोग्राम हमेशा जब भी बनाता हूं इतनी रफ्तार से ये वक्त निकल जाता है कि मैं आपसे क्या बताऊं। लेकिन आज आप सभी से आ गया हमें तो लेना चाहेंगे, क्योंकि अगर आज जुड़ा नहीं होंगे तो फिर कैसे मिलेंगे। और मिलेंगे आप सभी को आने वाले बुधवार रात्रि को 6 से 9 बजे, जबकि हम पेश करेंगे प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर, और वो है 10 तारीख जून को। आज जितने लोग भी साथ दिए हैं, ऐप किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू लिवेल, शुक्रिया, करम, मेहरबानी। हिल फिल लीफ एपियस, थैंक यू वेल लीफ अवॉर्ड, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कोशिश की एक सुंदर सा प्रोग्राम सजाने के लिए, बनाने के लिए, आप सभी ने एंजॉय की है, बस यही दुआ और प्रार्थना हम हमेशा करते हैं। तो अगर आपने किए हैं तो मैं खुश हूँ, कोशिश करेंगे सीव नंद्रेंद्र ह्यूनी को फिर इस तरह का एक प्रोग्राम बनाने के लिए। आज के लिए आ गया मेरे प्यारे सुनो लो, रहा फूल तो फिर खिलेंगे, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर से जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज। टेक केयर और रिमेम्बर, आई लव यू ऑल।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पे देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।